0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: உண்மையான கொண்டாட்டம் ஸ்டார்ட் ஆயாச்சுல. நம்ம ஃபோக்ஸ்வேகன் வர்சஸோட 4 ஆண்டு கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு 130,000 வரை சிறப்பு சலுகை. அது மட்டுமா, முதல் 3 EMI ஃபோக்ஸ்வேகனே ஏத்துக்கறாங்க. விவரங்களுக்கு ரமணி ஃபோக்ஸ்வேகன் ஷோரூமை அணுகவும். TNC அப்ளை.